मसूर नय लय प्रच जय नानक तुम खंत्र पाए जो जो मैं जो चली चंद्रावल कान कृष्ण जादुम भया पार जात को पीले आया बिंदरा बन में रंग किया कल में बेद थर्बन हुआ ना खुदा ये लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चरे वेद होए सच्यार पड़े गुणे तिन चार विचार आओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पड़।

निवास कर जाहि नरासे केत। फल फिके फल बक बके काम नावे पत, मिठ तनीवी नानका गुण चंगे आईया तत। सब को नवे आप को पर को नवे न कोए, तर तराजू तोलिए नवे सो गोरा होए।

कुल लाटं दो तोती बस्त पाटं ये जानस ब्रह्मं कर्मं सब भोग निश्चो कर्मं कहु नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पड़ी कपड़ू भावना।

आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए हो पुराना सुटी है पी फिर पाइए हो नानक तग न टूटई जे तग होवे चोर।

0: ना तू टस पूत महला पहला
1: तगन इंद्री तगन नारी भलके थुक पवैन तुदा तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वित गया पे वते वड़ता गए वरा कत्ते ले पहाड़ करे विया हो कड़का गल्द सिरा हो सुन वेखो लोकाए हो वेडा मन अंधा ना हो सुजान।

0: जप माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई सोडी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज सूरी बगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद यो ना पे आवे ओईसा कुड़ी रास कुड़ा वापा कूड़ बोल करे आहार शर्म

नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश तां ले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौंकी उपर किसे ना जाना, देखे चौंका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन। कहो नानक सच त्याई है, सुच होवे ता सच पाइए। पौड़ी।

थोड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएदा आपे दे बड़े आपे ही कर्म कराएदा वड़ हो वड़ा वड़मेदनी सरै सर धंधे लाएदा नगर पठी जे करे सुल्ताना काहू कराएदा दर मंगन भिख ना पाएदा दर मंगन भिख ना पाएदा।

0: बोले तन मन फिका हुए फिको फिका सदिया फिके फिकी सो फिका दरगे सटिए मोह धुका फिके पाए फिका मूर्खा किया पाना ले सजाए महला पहला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सर तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पटंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन हो लगा रब सेती देखने बिचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बात सचना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीबाने को कल में का हमा तुमा मेल दरले लेखा पीड़ छुट्टे नान का जो तेल पड़िया पे ही करना की।

0: गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लेंते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरव श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारणा निधि आवै ताई, सब थाई हो सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हो सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन आर बरन जात आर पात नहन जेह रूप रंग आर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राणि साहि साहाणि गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत ज्योत रूप हरि आप गुरु नानक कहायो तात अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमर दास अमरत शतर गुर रामह दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखहौ नैण सतगुर पूरा साह है त्रिभुवन जग तिस दा वणजारा रतन पदार्थ बेसुमार पाओ भगत लख परि भंडारा पार जात लख

मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: पार तेरा मर्तबा, रंग बरंग अनेक ना जापन करतबा, जी हो अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वदाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला परपूर दिसते जत कथा, नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता,
1: तुदे आगे बिनवता, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत चंगियाँ या बुरियाँ या।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया। आई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार। वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के

तरस पयोई तरस पया विहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया विहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभु के चरण निहारिया रखनहारै रखियो बारिका।

सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया सतगुरु ताप उतारिया उबरे सतगुरु की शरणाई जाकी सेव न बिरथी जाई रहाउ कर में सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने पए दया

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यों गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर राम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दुए दाई दाया, खेल सग जगत

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जिनी नाम तिहाया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल।
2: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

अपने आप साझी अपने रचना हो तुम कुदरत साझी करा सं ढिठो चाओ दादा करताब तू दुते वह करे बसाओ तू जानो ये सब से दिल ऐसे जिंद गुआओ करे आसन ढिठो चाओ।

पायो बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विच आप रखण कर प्रगट आग बनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचों मोह चुकाया। तुम यह विचार है जिन सच्चे जो चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

दुख दारू सुगरो पै आजा सुखताम न हो। तू करता करना मैं ना ही जाहु करना होई, मलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंतरा जाई लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफ सवाले हो जिनकी ती सो पार पया।

0: रने अबनासी हरखवंत आनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत पढ़िया दूसर आन न अवर पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाख्यो तेह जन तृप्त अघाए जे ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार जे ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
2: सच सबा देवान सच सच सच्चे पै तरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजो संसार आप अपुल न पुल्लो रतन नाम अपार के मनो पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो को बिंद सर्व सुख तिन हो पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुर फिर जो न आए
3: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम ना परिए ब्रह्मादक सनकाद से गुणंत ना पाए अगो ग्यो नहीं जाए पूर सर्वरिया समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
4: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेहलक पाजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत तेहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कर उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
5: अब राखो दास पाठ की लाज जसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाकस फारे कर आज फुन

0: पाठ की लाज। सतगुर नाम एक लिव मन जपे धड़, तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो। तारण तरण खेणा मात्र जाको दृष्ट तारे, शब्द रद बिचारे काम क्रोध खो वह जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो। जाको देख सदृद्धर जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मेले तो वह जियो। सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अनभव ने जा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने।
2: एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण लै दे बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो।
3: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो, अब नाहे अवर सारे काम

कृपा भूले सोते दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राख।

निस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अर सो कुर सो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दिसाह सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दिसाह सतना

किया तौ परवान है, जासा हो तर प्यार पाओ सिगार तबोल रास भोजन पाओ करे तान मन सौंपे कंत काओ।

बोलोजी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो समराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निदिया वैताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया। जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही। देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़ियारिया नाल चिराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नाही हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही। तिना दी कमाई दा ध्यान तर के।